अवतम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तो कितना ब्यूटीफुल है। लुकिंग मेरा अवतम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तुम्हें गुस्से में फोन मेरा काटा दो, सिकंदर

0: Yeah.
1: Oh, baby.
0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
2: शेयर क्या बात है यार।

0: Dagen.
1: वो बदल गया
2: रघुनाथ से भी कोई भी शंका अपने प्यार का बजा दो लंका तेरे मेरे बीच में तो कोई भी आया लगा दो लंका छोड़ छाड़ के दुनियादारी बस तेरे पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं।